0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। शुभ कल कार्यक्रम मित्रों हम अपने श्रोता साथियों के लिए 2008 से लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शुभ कल कार्यक्रम आने वाला कल किस तरीके से हो, और खास तौर पर शुभ कल कार्यक्रम में हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे बातचीत को हम लेकर आते हैं और चर्चा भी करते हैं। अब वास्तव में लग रहा है हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे श्रोताओं को कि वास्तव में ये जलवायु परिवर्तन ही है, क्योंकि बेमौसम बारिश, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, कहीं सूखा पड़ना तो कहीं अत्यधिक बारिश होना, कहीं बाढ़ आना तो कहीं बिल्कुल मिट्टी ही नहीं गीली होना। ये सारे मौसम चक्र का बदलना, हवाओं का बदलना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो जलवायु परिवर्तन से होती हैं। एक बार फिर से पुनः हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम जलवायु परिवर्तन का एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, क्यों बदलना है, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है तो बात आती है हमारी खेती किसानी से जुड़ी बातचीत आती है। तो खेती में किस तरीके से हम रासायनिक पद्धति से जो हम खेती अपनी करते हैं उसको ना करके हम अपनी जैविक पद्धति से खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद बनाकर किस तरीके से हम लोग अपनी खेती में अपने बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम केचुआ खाद बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से रासायनिक खादों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन

0: बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में पूरा मिश्रण होगा। जलवायु परिवर्तन जानेंगे, क्यों लोग कंपोस्ट खाद बनाना पसंद नहीं करते, क्या कारण है, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि क्या है, बैरू भौजी को भी सुनेंगे। तो देरी करते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं, हमारे एक रिपोर्ट हमने बनाई है तो उस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं, बुन लेते हैं और इसके बाद हम आपको एक कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इस पर तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी रिपोर्ट को।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

0: साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं।
1: हालात बहुत खराब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है?
0: जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा।
1: तो इसका मतलब यह है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, वो तो बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी, और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई।
0: छह मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड

0: उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है।
1: विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है।

0: और अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं।
1: तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं।
0: तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाए तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए। यकीन मानिए, आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने इस रिपोर्ट को सुना और समझा कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन किन कारणों से हो रहा, इस तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों सुनी। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, क्या कारण है लोग नहीं बनाते हैं, क्या कारण है कंपोस्ट डालने से अपने खेतों में हिचकिचाते हैं हमारे किसान साथी, ये तमाम प्रकार की बातों को हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है। और इसके बाद सुनेंगे साथियों बैरो भौजी को।
1: किसान

0: कलुगा, ओए कलुगा, जाने कितने कितने चलो यार भंसारी से मेरे इतना तसला भर के रख ला है वो मैंने, अब जाने कितने निकलेगा परमेश्वर, अब मैं की खोटी रहो।
1: अरे भाजी कहा फोन चिल्ला रही, कहा बात है,
0: कहा क्या है लालाजू, कहा बजा रही, तुम्हें तो राम दी चार आंखें लग गई, देख तो मैं गोबर को तो तसला उठ बैठाई और कह रहे कहा बजा रही।
1: अरे भौजी जा कह रहे काय को चिल्ले आ रहा है।
0: अरे लालाजू तुम्हें भगया राम दिए मौका पे आ गए, मैंने एक जो तसला उठवा दू, तो कल को जाने कितने कर गा भुनसारी से भाई, देखा तो मैं बाप हो तो।
1: अरे भौजी तू तसला उठवाने।
0: अरे हाउ लालाजू ये हमने कही नहीं है, तुम सही मौका पे आ गए, ने को लगा दू हाथ ने काकोती में डाल रहा हूँ, अभी बुला भरो ये तसला उन ने कर जब भैंस काकोती, अब मैं कहा बताऊ लालाजू अपनी बेथा।
1: हाउ तो भौजी ते ऐसी कैसी बात कर रही, मैं तो उठवा देते हैं ले।
0: आओ उठवा। लेकिन लाला जी तुम निकल आए देखो मुझे तो बड़ी, चलो ठीक रहो मैं नदे आ रही थी जबकि तुम आ गए, मुझे बड़ो अच्छो लगो कि कम से कम उठ तो लाओ मेरे।
1: अच्छा भौजी एक बात तो बता कि तू घूर तो दिखाते नहीं है।
0: अरे लाला जी वजन वजन लग रहा हूँ, मैं बोल तो पा नहीं रही होंगी, मैं आ रही होंगी सो बता रही।
1: हाँ
0: और लाला जी मैं एक काम और कर दो, अब आ गए होंगे तो काकोदी ने कुछ मेरी भैंस बंदी हैगी, बाखों में सानी करके रखे ही, बस सानी रख दो तुमने तो बक्की सीट लग
1: सुनो कर दो अलगों में।
0: कहा कह रहे लाला जी रखे देता, अरे लाला जी तुमने तो यह नो नहीं कही, रख दो
1: देख लो भैया ऐसे करवा जाता अपने काम।
0: कहा कह रहे लाला जी,
1: अरे कुछ नहीं भाई जा कह रखें दे।
0: हाँ तो ठीक है लाला जी, ओ लाला जी अब देख लो लाला जी आज सुबह तरह घुस गए होते, जो नहीं मैंने कही थी सानी देख लो मैं पहले, हाँ सानी तो रख दी, चलो ठीक है लाला जी।
1: हाँ भाजी कहाँ है बता।
0: अरे लाला जी कहाँ घुस गए, कल का है वो होते।
1: अरे नहीं है वो अभी हाथों तो खेल में करेगा, बोर बोर सीते कुछ समझाते नहीं है,
0: बापों में देखा होंगी आज बहुत खेला खेल ही खेल चलो को 24 घंटा पढ़ाई के लाने नहीं सुना, रुक जाओ मैं देखा लाला जी धर रही थी भैंस को सानी।
2: हाँ भाजी धर तो दई थी खा ली बाने,
0: इतने जल्दी खा ली कि मैं गोबर डाल के नहीं आ पाई,
1: अब तो भाजी तेना को।

0: अरे तो हाँ जाकाओ से मैंने डर ही नहीं है, तुम पक्के काम चोर होंगे।
1: अरे भाई ते तो ऐसी बातें करत, मुझे डर भी उनका बने खा ले पूरी जब मैं कह तो रहा।
0: चलो ठीक है, अब कह रहे तो करे लेते में विश्वास। हो लाला जी तुम कछु पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछ रहे थे।
1: भाजी बात जाए कि मैंने कुछ करते ही घूरे ना हो तो ते घूरो दिखा दी नहीं है तना के मन डरो। मैंने जासूची को उठा ली थी भौजी को गोबर कहे के डेली दिन डर के होती तो जात कहा जा पूछने थी मुझे।
0: का क्या है लाला जी, मैं गोबर भरा थे वो को बताओ को भरा थे वो। वैसे मैं तो बहुत कम डारा थूंगी, ये डाल दो तो हैगी
1: तो फिर तू घूरो का नहीं दिखा, मैं तो जा पूछ रहा।
0: अरे लाला जी पहले तुम जो बताओ मैं भरत कू है, तुमने अभी हल कही।
1: अरे भौजी जा मैंने कितने कही कि कू भरत है, मैं तो जा कह रहा हूँ कि कम दिखा तुम्हारा गुरो।
0: अरे लाला जी कम वो जा से दिखा के मैं गोबर नहीं कही तो डायरेक्ट मैंने कही नहीं है कि मैं एक आध मेरा डायरेक्ट होते और पूरे की मैं खाद बना ली थी।
1: खाद बना ली?
0: हाँ
1: कैसी खाद
0: ले ओ लाला जी, तुम्हें पता नहीं है।
1: अरे मैं कितने जाना, अगर जाना था तो कहाँ पूछते।
0: राम भाई लाला जी ये नहीं उमदा खाद बनने लगी।
1: अच्छा गोबर की बनन लगी?
0: हाओ ये मैं गोबर जाना नहीं लगा, मैं एक भैंस है भाई से इतना अच्छो खाद बन जाती कि मैंने कुना रासायनिक बालों को लाओ। राम भाई
1: वो तो सो घूरे पे डाल रहा करे सो बन जाओ तो खाद।
0: अरे लाला जी बा में उतने फायदा नहीं रख जितने की बर्मी कम्पोस्ट में केचुआ खाद में रह उठेगी।
1: बर्मी कम्पोस्ट?
0: अरे लाला जी बर्मी कम्पोस्ट नहीं, बर्मी कम्पोस्ट जाको केचुआ खाद का तो बर्मी वो इंग्लिश को उठे वो सब मेमोरी मोड़ा कह रहा थी मैं तो केच हुई खाद हैगी वहाँ तो केच का खाद बना लू। मैं गोबर ज्यादा नहीं लगा फिर भी मैं तो ब्लड डाल देती एक भैंस है कितने निकला था एक भैंस को।
1: अच्छा जाके खाद बन जाता?
0: हाओ
1: तो केच हुआ रहते।
0: अरे लाला जी केच हुआ मोल लेने पर ज्यादा नहीं अपन कितने बनाया। अब मैं ऐसे कैसा बता दो तुम्हें, मैं ये कहा ना फिर विधि तो बताऊंगी कि अपन इमें केच हुआ छोड़ दे तो वे कहा हंगत हेंगे तो उन्हें इसे कहा फिर वहाँ खाद बन जा तुम तो जाना थोंगे कि क्या चुका अपने किसान में फूल उठेंगे।
1: जा तो मैंने यानी पढ़ी थी दो की किताब में कहानियाँ कि क्या चुका होते भी अपने किसान के दोस्त होते ही।
0: कहा कह रहे लाला जी दस की किताब में वो तो आ रही दो की क्लास से, तुम कह रहे दस में पढ़े। अरे लाला जी कहा पढ़ रहे थे तुम जब से?
1: अरे भाजी क्या सुना तो थे नहीं तो दिमाग खराब हुआ कर देते।
0: काय
1: अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ कि दो की क्लास है।
0: अच्छा अच्छा हाओ हाओ लाला जी दो की मैं पढ़ी। भाई तो मैंने कही कि मैंने पढ़ी थी उस जमाने में, क्या साल हो गई मुझे कम से कम 40 साल है तो हो गई।
1: अरे भौजी अब जा बता तो मैं तो कहते तने कही गोबर तो फिर कम मैं कैसे बनाऊं खाद।
0: अरे लाला जी मैंने कही जहाँ मैं गोबर जाना नहीं लगा मैं गोबर डाल दूं और जो भैंसन को वो निकल रहा हूँ अपना रो रहा पतोरो वो भाई मैं डाल जाऊँ और वो मैं कैचुआ छोड़ दूँ तो अपनो जो 30 दिन में बन के तैयार हो जाऊ थे 30-40 दिन में तो ऐसी खाद उमदा बन जाओ ऐसी खाद बन जाओ लाला जी खेत तो ऐसे लहलाए कि का बताए।
1: तो ई खाद को अपन कर का सकत काय काय में डाल सकत?
0: अरे लाला जी आप सब्जी लगाए हो तो सब्जी में डाल दो और खेती में हो तो खेती में डाल दो चाहे कछु में डालो ई खाद को
1: तो बड़ी नोनी उमदा सी खाद है जा।
0: तो फिर लाला जी आसो तो जरूर ही बना जो।
1: हाँ वो जी तो फिर मैं अपनी एक गज्जा को गोबर अब खाद ही बनाओ कर हैं।
0: हाँ तो फिर मैं और काम कर लो अपनो
2: साथियों। अभी आपने सुना बैरो भौजी को जिन्होंने हमें कंपोस्ट खाद के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। साथियों उसी तरह बुंदेलखंड के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में लागत खूब लगाते हैं लेकिन पैदावार नहीं होती है जिस कारण से आज भी किसान के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है और लाखों किसान डिफाल्टर हैं। तो आइए चलते हैं कुछ किसान साथियों के पास और पूछते हैं उन किसानों से कि वो कंपोस्ट खाद से अपनी खेती क्यों नहीं करना चाहते।

0: सबसे पहले आप अपना नाम बता दो।
1: मेरा नाम है वृंदावन पाल।
0: वृंदावन पाल कहाँ से?
1: राधापुर से।
0: अच्छा वृंदावन जी, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आप जानते हैं, जानकारी है?
1: नहीं, वो नहीं है।
0: अच्छा, आपको ये इस तरह की जानकारी अगर उपलब्ध कराई जाएगी तो आप सुनेंगे उसको?
1: सुनेंगे। हमारा नाम है रविशंकर दुबे।
0: अच्छा रविशंकर जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आपको जानकारी है?
1: नहीं।
0: नहीं जानकारी है?
1: नहीं।
0: रेडियो पर आप सुनना चाहेंगे इस तरीके की जानकारी आप?

0: हमारा नाम राजेश बंसाल, ग्राम जुड़ियाई।
1: कि कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानते हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है?
0: ना सर, तो मेरा नाम पहली बार सुना है।
1: अच्छा,
0: तो
1: आपको जानता ही नहीं है?
0: हाँ सर।
1: जैविक खाद के बारे में?
0: ना सर, ना उसका भी पता नहीं है सर।
1: अच्छा, आप जानकारी चाहते हैं?
0: हाँ, चाहते हैं।

0: हमारा नाम लालाराम यादव निवाड़ी जी।
1: अच्छा लालाराम जी, हमारा एक सवाल है कि आप कंपोस्ट खाद के बारे में क्या जानते हैं?
0: कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानना चाहते तो हम बताना चाहते हैं, कंपोस्ट खाद वह खाद है जिससे तो न किसी प्रकार की आदमी को नुकसान होता है, न फसलों को नुकसान होता है, न जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और बढ़ती है।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं कंपोस्ट के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थ जैसे पत्तियां, बचा हुआ खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका विघटन हो जाए। हमारी पारंपरिक खेती में कचरा, गोबर, जानवरों का मलमूत्र व अन्य वनस्पति जन कचरे को एकत्रित करके खाद बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा मिट्टी में जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते थे। इस प्रकार जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का विकास होता था एवं मिट्टी अधिक समय तक अच्छी फसल देने में सक्षम रहती थी। खाद बनाने का कच्चा माल सभी किसानों के खेत में ही उपलब्ध होने के कारण उसे बनाने में विशेष खर्च नहीं होता था। जैविक खाद फसल और मिट्टी दोनों के लिए लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और अभी आपने इस चर्चाओं को सुना, लोगों के विचारों को जाना। खासतौर पर हमारे बौरव भाई जी ने भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से श्रोता साथियों को समझाया है, कंपोस्ट खाद के बारे में जानकारी दी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और तमाम प्रकार के हमारे साथियों से उनके विचारों को सुना, जाना, समझा। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे। तो आने वाली फसल, चूंकि इस बार पानी खूब दम से बरसो है वो, तो हमारे किसान साथी आगे की फसल की तैयारी अच्छी से हुई होगी, अच्छी पैदावार हुई होगी, पानी की समस्या नहीं आया है। लेकिन अब पानी की समस्या खत्म भई तो हमें दूसरी समस्या का आता है कि मिट्टी की जाँच कराओ, संगे संगे उनको मिट्टी के संगे संगे नए बीजन को उपचार करवो, कौन से तत्व की कमी है, ये तमाम प्रकार की चीजें। और खासतौर पर कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को अगर आपने जान लो, समझ लो, सोच लो, तो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाकर अपने खेतन में डाल सकते हैं और वहां से अपनी उपजाऊ शक्ति जो नष्ट हो चली जा रही है वह तनक ठीक ठाक हो जाएगी। हमें ऐसा है कि हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत हुई है। अगर नहीं है तो हमें जो भी बता सकते हैं कि का नहीं है सहमत। अगर सहमत है तो हमें कार्यक्रम के बारे में जरूर फीडबैक दें। हमारे नंबर पर नंबर है 9219207049 और साथियों हमारा पत्र है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम सुप कल से जाने की इजाजत। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुशहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खासतौर पर युवाओं का कैरियर

0: ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाए, कैसे बनाए, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में
1: जी
0: अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए। आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है।
0: जी
1: बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जोरदार अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विवेचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर कि प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे
0: जी
1: हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं,
0: जी
1: कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें,
0: जी
1: या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो ऐसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है
0: जी
1: जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल में छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्म में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज है, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार है, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार है। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रगानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, धमाल वे खूब कर रही है और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने

0: भी खूब है। सो बिन्नु रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नु रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टूडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम है। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है, जो और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर को शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहां पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमएलओ और बीलिप पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है, मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को न सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को पोस्चर्स को फेशियल एक्सप्रेशंस को आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए क्योंकि उसको दोबारा सुनने का उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतर्वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में यात्रा के दौरान कार चलाते हुए अपने दफ्तर में इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाते हुए रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी आज भी लगभग 100 वर्ष होने को हैं, अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है मिनिस्ट्री वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें।
0: जी हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत है, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं तो उन सब की अवधि तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहां पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहां पर प्रस्तावित है क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है तो उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूं तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहां पर फिल्म एक्टिंग को लेकर और यहां पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहां पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त समझे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं, और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग

0: से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूँ चाह कि वे आए और जहाँ क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारे संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, और साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथ ही इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

तो शोभायमान बात, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सो लेती।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही है कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो है। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसा सफर रहा है वो पूरे एक जीवन को। उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने की भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिस शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी हतो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि जितनी भी कहानी अपन और अन्य स्त्री में सुनी हैंगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बियोरे देखे आते ही तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रह हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से वे आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी। तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हें की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: गौरवम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही हूँ।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपका माय को कहते हैं?
1: हम माय को झांसी में।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोगन चौराहे डाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना होगा, उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा,
1: उन्हीं
0: के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन कौन? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम होता?
1: वहाँ पे तो चौका वासन करते सबके। तो ज्यादा जमीन नहीं होती, मजदूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, मेरी अम्मा के लिखा करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समा छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, 10 बच्चा खिला देते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती हुई और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपया दे देती मेरे।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहती
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करी, लेकिन उससे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ, तो खेलने की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल आप कंची खेल रहा है, कहीं ये भी खेल रहा है, ये यही खेल खेलते तो होता है। चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा का
1: साउंड का
0: चपेटा
1: कलर।
0: अच्छा,
1: जो खेल रहा है।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हैं? खेल में गीत ना, गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो है ना, गीत नहीं था।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आता? पहले तो गाती नहीं आप?
1: अरे भूल गया, तो बड़ा आप ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बड़ा को नहीं आपको, लेकिन बड़ा को नहीं लगा था
1: आपको?
0: तो कौन सा गीत गाते
1: हैं? कौनो नहीं गाते
0: आप गाते? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन थी?
1: हमारी सहेली अब सब बुरे हो गए, अब सहेली हमको जाने कहाँ कर रही थी।
0: तो
1: कौन बुरी ना हो तो कल को पुष्का ना हो तो ऐसे सबके नाम होते सबके, कोई की कल शादी हुई गई थी, कोई की कल अपने अपने घर से नहीं।
0: अगर मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते
0: कभी, मिल जाते इकट्ठे हो जाते
1: हैं, कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं। खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब दोनों मिले तो अच्छे लगे,
0: अच्छे लगते हैं। अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से होते, मतलब पैर तक आते कपड़ा कौन कौन से चलते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते, और फिर आके पहनते, और फिर आके नहीं तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते। हम तो लखरा के गए तो ये पहन लेंगे, और ये कह रहा हूँ।
0: अच्छा जी, मतलब कोई अलग से नहीं
1: है? कोई अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी अब मैं तो ध्यान नहीं है बैठ के, तो घुमाए घुमाई भाई जाते।
0: तो मतलब कभी तो अंदाजा हुई है जब आप जाना कभी शादी के बारे में?
1: नहीं जान सकते जब हमारी शादी हो गई,
0: बिल्कुल नहीं जान सकती। अच्छा, जिस आपकी शादी हो रही थी उसको आपने देखा तो
1: है?
0: पहले से देखा तो
1: है? नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते?
0: हाँ,
1: पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: बेटे से तो आते ही हमारे बाबा का जो 9 साल के साथ 9 साल के हम आपके पिताजी गुजर गए थे, सब 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जिन पे काम कर रखते तो मेरी माता ने कही क्या ना 500 रुपया दे दू मोड़ी के ब्याह करने, बोले तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चलो।
0: सही बात,
1: तुम लोग 750 रुपया तो मैंने डाल दी।
0: अच्छा, जब आपकी ब्याह हुआ के बाद कितने आपकी ससुराल में? राधापुर में भाई है, राधापुर ससुराल है। तो आपने पहली बार मतलब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगे, जैसे पहले बनाते मंडप?
1: पहले मंडप तेल लगाओ कर मंडप बो टीका।
0: अच्छा, तीन दिन को ब्याह तो?
1: हाँ, तीन दिन आते हैं।
0: तो बड़ा तीन दिन मिली रही थी क्या?
1: एक दिन एक दिन तीन दिन मिली रही थी बड़ा
0: तीन बार ना आ रहा
1: नहीं बिहार का टीका को देना।
0: चावल जी का ढाले जाता
1: है?
0: अच्छा, चावल को अजू पता ही
1: मड़वा के खड़ा कर ला हमारी बुआ ने चावल मार दे सब ने
0: खड़ू के बाद
1: बस फिर बाहर चलो गए लड़का। फिर पंगत मंगत होने लगी, पंगत मंगत भाई फिर चढ़ा चढ़ो फिर
0: चढ़ा
1: तो आप ना चढ़े थे एक किलो के खमगजा,
0: एक किलो की पेज ना,
1: हाँ एक किलो के पेज ना खमगजा
0: बस दो
1: रही थे पैर अब थी पैर
0: बाजू बंद।
1: हाँ दे चढ़े थे।
0: तो फिर जब आप बेटा हो कहते हैं आए थे ससुराल में कुकु मिलो आपको?
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा, आपके में नंबर की है?
1: हाँ, दूसरे नंबर के नानी दादो।
0: नंदन की शादी हुई?
1: हाँ।
0: अच्छा, शादी के बाद?
1: बड़ी हती।
0: बड़ी हती। अच्छा, तो फिर आपके कहते का कलस में वही मतलब कंकन छूटे
1: कंकन छूटे हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहते थे चले गए थे।
0: खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
1: खिचड़ी बनाई थी।
0: आपने खुद बनाई थी?
1: मैं बना पाई थी, हमने जेठानी में बना दी थी।
0: अच्छा।
1: और चमचा से तरवा गई थी
0: नाम हुआ था। तो आप ओलेंडर
1: बना दो में ओलेंडर बना दे।
0: अच्छा, ओलेंडर बना दी। जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर
1: कहा नहीं कछु नहीं मिले तो हमें तो पैसा रखना पड़े थे खुद लेने
0: वो देने।
1: हाँ, पहले देता ही है तेल।
0: अच्छा।
1: अभी भी देता हूँ रन के।
0: हाँ।
1: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहू से सास लेते हुए पैसा।
0: अच्छा।
1: चाहे दस दर हो चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ बना दी लेकिन वो सास ले और अंडा तो उनका रखत बहू तो बेबी सास ले।
0: तो जैसे पहले एक अरे एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो समय में खुला
1: नहीं हमारे समय
0: नहीं जूड़ा नहीं खुला। अच्छा, आपकी
1: छोड़ा को लगते
0: छोड़ा
1: सास कर सकती है
0: खोलता पति के
1: काम
0: हाथ भूत तो मतलब
1: जब सास रे में आ गया तो जो छोड़ा कर सकती सास
0: नहीं तो कछु मात
1: कछु मात हो जी।
0: अच्छा, आपको नहीं पता
1: छोटे आते से कछु दे
0: सब नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल कर
1: जेठानी के संग करते लड़ाई का
0: कभी लड़ाई नहीं हुई? आप
1: नहीं हमारी दी है जेठानी ना सास से भाई कभी
0: नहीं काय नहीं होती। आप सीधी हटी के दो जने
1: भी एक से आते मिल के कर लेते बस सबने फिर सहन हो बस सब अलग अलग हो।
0: अच्छा, और सासरी में का काम होती आपकी? खेती
1: खेती होती रात से खेती होती।
0: अच्छा,
1: पहले मोटर कौन होती रात ऐसे खेती होती से रात चला कर रखते।
0: अच्छा, और जैसे खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
1: है? चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
0: कितने बजे उठाती हैं आप?
1: 4 बजे उठ जाते
0: हैं।
1: 4 बजे से पी सकते हैं, 5-6 किलो नाच पी सकते।
0: 5-6 किलो रोज पीसने?
1: हाँ रोज, इतना जेठानी पी सकती।
0: तो भी कभी पी सकती आप? जैसे सुबह से उठ के पी सकती
1: हूँ, 4 बजे सुबह पी सकती।
0: संग पी सकती
1: हूँ? कल सवे कल अलग अलग पी सकती।
0: अच्छा, फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद का
1: गोबर गोबर डालते।
0: कितनी गाय भैंसे होती आप?
1: बोला 10-12 गायें होती।
0: अच्छा,
1: गोबर में बता रखते, झाड़ा झूठी करते, फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
0: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
1: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, सो घंट चल आते जनवर।
0: अच्छा, वहाँ से वहाँ नहीं आते?
1: बेलन से,
0: बेलन से, बेलन से चलते
1: घर वाले आते।
0: सो
1: वही चलाते रहते, कभी सात बैठा भी चलाती, कभी हम चलाते रहते।
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती है? अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
1: है? हमारा 6 लड़का।
0: 6 लड़का और लड़की?
1: लड़की नहीं है।
0: लड़की नहीं है? तो अपने लड़कों को तो पढ़ाओ
1: जो हुए। परेशानी होती।

0: कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: पाँच पाँच पढ़ा यही स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी स्कूल में। तो अब सबकी शादी हो गई?
0: हाँ, सबकी हो गई। सब सब नाती ना तो लड़की हो गई।
1: अच्छा, नाती इनकी भी हो गई। कितनी नाती है ये?
0: छह नाती है, छह नातनी है।
1: अच्छा, तो बिला आपकी को मतलब बिला बड़ा परिवार है।
0: हाँ, तो छह लड़का है, तो दो दो है सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के चार है बड़े के, तीन बड़े है, के तो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा होगा।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है, आपको अच्छा लगा था? इतने त्योहार पे हुआ, सब जगह आया था, तो अच्छा लगा था ये ना। तो आप समाटा नहीं खेलती हो?
0: नहीं।
1: बहुत बढ़िया आपकी बात है, हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही है आप?
0: 20 साल से जा रहे हैं।
1: जैसे आपने पढ़ाई पास तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसा लग रही थी? मतलब
0: पहले उन्होंने चार गमन के कागज दे थे घर के, तो सब में 200 रुपए गेम लगते।
1: अच्छा,
0: तो सब गमन ने कही 200 रुपए गेम का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने, सुख मेरी चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सका।
1: हाँ,
0: बिल्कुल। है 350 में लगते है, 200 रुपए
1: धीरे धीरे करके।
0: फिर हम इनके ससुर बोले लादा हम दे दे रू करें, तो मैं 2-4 पेली नाच खा भी के गाँव में गज्जा का करा। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पेली नाच, हम पानी भरे आते हैं। तो फिर लगे हुए इनके, तो पानी तो अरे भी अभी छोड़ दो, हम नहीं लगे। जब से हम गाड़ी करी जब इनसे पानी भर इनको, बोला खाए भी देखी परेशानी से, जैसे नहीं मत दे तो सकते खा, नहीं करते तो कुछ लगे।
1: सही बात
0: है, तो तीन महीना 3.5 हजार हमारा, फिर 1500
1: बढ़ते चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया, आपके पूरे जीवन को अनुभव आ रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने क्या सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी और जाओ कर ले कर सोचा था।
1: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे?
0: चौपे में तो महत्व जो देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिखा है।
1: लेकिन आप सोचते हो ना पढ़ाई जरूरी है जीवन के लिए,
0: जैसा पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़ दे तो क्या सोच रहे हैं बताओ।
1: सही बात है, लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही है, मिल रही है,
0: लेकिन मिल रहा है पहले
1: नहीं
0: मिल रहा।
1: हाँ, पहले नहीं मिला, लेकिन अब मिल रही, तो अब फ्री के नाम में पढ़ाई चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए कि नहीं?
0: अपनी सवाल खत करी नाती नाती पढ़े
1: तो पढ़ाना चाहिए।
0: हाँ, सब पढ़ा रहे, कोई पढ़ रहा हो, कोई बुआ बड़ी बड़ी हो गई, सब सात सात आठ आठ में करके छोड़ दो, बुआ पढ़ दो ना तो धन की।
1: बहुत बढ़िया, आप
0: दोनों को पढ़ दो, अब दो मोटी पढ़ रहे की।
1: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, अपने पूरे जीवन के बारे में बताई, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

अपना रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जाना है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी, कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ भूखो चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़ता। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इनमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चलत चलत सुनो आप ये गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और डीओ टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसे मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्टे से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल। तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायो वेस्ट भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पर सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात, जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो नेगेटिंग।

0: रिपोर्ट रिलायंस।
1: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसोबियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
0: हम जो मशरूम जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, एक जो फूडिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है, और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है, हमें हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है, और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच इज इनहेरेंटली फायर रिटार्डिंग कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पर भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपन्स, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होते हैं उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्री शुरू होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स है, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक साल में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपेरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है, क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है, क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बेयर है विद प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कटर्स, सीट कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सेल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हर शिप को 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहिए कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट में उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सबका एक मिश्रण बना के जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है उसको बना के फिर उसमें हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है इस पूरे प्रोडक्शन में भी, हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पोल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पोल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकिल करके क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे भी अलाइंड है, 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड है, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल्स से अलाइंड है, लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं माइसेलिन को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम ऐसी भी नहीं, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें, और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्रीज से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सके जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो लैब स्केल पर है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रेटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे, एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है, और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स $1 trillion मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 degree इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टुवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो उसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे, एंड देन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफकोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल. हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी.
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है,

भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं। तो भारत सरकार की जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स इस्टेब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है। ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए। तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है।

हाँ देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज तीन कर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढें जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों न हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जापान सबजन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन ई स्टोरी को सुनना है। आप हो रहे कह रही है कि माता दीन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सबजन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लाओ है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों ये गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ये कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: जब श्री कृष्ण भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया।
1: घर गए तू

हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से, जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई देवी गाय और कहना।

0: इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात भर जिंदगी हम किया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज वाले से हम लगो बताए कैसे, यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: बाबा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना, कल तलक तुम्हारी थी, कल तलक तुम्हारी थी, आज ये हमारी है, कल तलक तुम्हारी।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम फरमाशी कार्यक्रम में, और एक साथी हमारे साथ आ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सागर प्रसाद प्रजापति मात्र से करता हूँ आपको सादर नमस्कार।
0: सादर नमस्कार आपको भी, बहुत बहुत नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य है, मस्त है, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और मनीष जी और वर्षा दीदी को साथ में सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा, बुद्ध गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और मुनिया पूर्णिमा के साथ साथ में अषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आने वाला शाम की बहुत बहुत कामना शुभकामना।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: क्या खूब लगती हो, वही सुंदर लगती हो, मुझे साथ ही साथ आपने प्रतिदिन गीत को गाया है फिर परमात्मा के लिए।
0: ठीक है, आपको पसंद को जो गीत
1: धन्यवाद,
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।

0: अपना बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? जी योगेश भैया, क्या हाल चाल है आपके? बताइए कौन सा गीत सुनेंगे? बिल्कुल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद को जो गीत।
1: बहुत शुक्रिया।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहिका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी भैया, क्या हाल चाल है आपके?
1: हाल चाल इस समय हम पड़ोरा की सब्जी खा रहे। आइए सर जी, खा जाइए
0: पड़ोरा की सब्जी, आप खिला दीजिएगा।
1: जी
0: आप कब खिला रहे हैं पड़ोरा की सब्जी?
1: आज ही खिलाएंगे क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। आइए सर जी, थोड़ा हमारे मूंगफली में दवा छिड़कवा दे।
0: ठीक है ठीक है, आ रहा है, हम सा परिवार आ रहा है।
1: जी जी जी
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दिल लगा लिया है मैंने रेडियो बुंदेलखंड और छा से, बुंदेलखंड और छा से।
0: दिल लगा लिया है तुमसे प्यार करके, इनको बदल ही दो आपने गाना को।
1: तुम्हारे प्यार का क्या हिसाब दूं,
0: क्या बात है,
1: तुम्हारी मोहब्बत को क्या खिताब दूं,
0: क्या बात है।
1: कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें जरूर पेश करते, लेकिन जो खुद गुलाब हो उसे क्या गुलाब दूं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और सुनो आपके पसंद को जो गीत।
1: जी राम राम भैया।
0: राम राम भाई साहब।

0: बहुत बहुत स्वागत करा थे आगे को बोल रहे हैं अपन
1: इंजीनियर कुशवाहा बोल रहे हैं सर श्री हरपालपुर से।
0: जी भाई साहब क्या हाल चाल है अपने?
1: बढ़िया है, पानी बरस रहा है आज रात में तो बढ़िया खुशी आनंद ही है।
0: इतने नहीं बरसो यार अपने, अब बरसा रहे तुम।
1: अरे नहीं अब आज शाम लो जरूर आज बिल्कुल समझो मंगल पर आ रही है।
0: ठीक है भाई साहब इंतजार करें शाम तक को।
1: हाँ
0: अब बता दो कौन सा गीत सुनना है।
1: एक गीत आया सावन झूम के, ऐसा गीत है
0: आया सावन झूम के।
1: हाँ
0: अच्छा और सब बढ़िया
1: और बढ़िया जगत है जी। कार्यक्रम के अंतराल बीच में अपना नंबर बताते रहे या फिर तो स्क्रीन पर चलाते रहे।
0: ठीक है भाई साहब आपने।
1: हाँ बहुत मेरे साथ जैसे कमी है काहे के हर जो एफ एम उन पे कार्यक्रम में नंबर बताते हैं या स्क्रीन पे चलाते हैं तो मैं कहे गया किसी को ढूंढ नहीं पाता है नंबर।
0: ठीक है साहब हम चला दें वो।
1: ठीक ठीक नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और साथियों जिस किसी श्रोता साथियों को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो लगा दिए फ़ोन हमारे नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749, और सुनिए अपनी पसंद के इन गीतों को फरमाइशी कार्यक्रम में।

0: करते हैं, एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद सर जी। सर टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं?
0: बस एकदम बढ़िया है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: आया सावन झूमके का सुना दीजिए सर।
0: आया सावन झूमके,
1: हाँ, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे।
0: क्या बात है, बहुत पुराना गीत को आपने चुना है।
1: बस सर पुराने, हम भी इसलिए पुराने गीतों की फरमाइश करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और 1969 में ये फिल्म आई थी
1: जी, जी।
0: रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: शुक्रिया सर जी,
0: शुक्रिया।

0: फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी,
0: नमस्कार भाई साहब जी, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं सर जी। और
0: क्या
1: गुरु
0: बात
1: पूर्णिमा
0: है
1: जी, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: हाँ जी, ये आया सावन झूमके,
0: ये दो बार हो गया है सभी
1: ये हो
0: ने।
1: गया। अच्छा, तो आई मिलन की रात का।
0: आई मिलन की रात,
1: हाँ जी,
0: उसका कौन सा गीत सुनोगे?
1: पावन वाला ही।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: और सब बढ़िया?
1: सब ठीक है, मौज में मस्ती में आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं सर जी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, आप कैसे हैं और मौसम कैसा है उधर का?
0: एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है।
1: बारिश हो रही क्या?
0: बारिश नहीं हो रही है, बारिश की
1: बारिश
0: इंतजार कर
1: यहाँ,
0: रहे हैं। बारिश
1: बारिश
0: की
1: यहाँ भी नहीं
0: समस्या
1: हो
0: है
1: रही।
0: भाई साहब,
1: हाँ जी,
0: बारिश की ही समस्या पड़ रही है बस।
1: हाँ, हर जगह बारिश नहीं हो रही है, केवल बादल आते जाते रहते हैं, बारिश नहीं होती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताओ
1: हाँ
0: सर,
1: जी, कुछ
0: चलो सुनवाते हैं आपके पसंद को जो गीत। स्वागत
1: दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
0: स्वागत है, स्वागत।
1: हाँ जी, सबसे पहले हमारे राजू यादव जी हैं, और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और गंगाधर सावंकर जी हैं, और सोनू जी हैं, और हमारे श्रोता लोकेंद्र वर्मा जी हैं,
0: जी
1: और चंद चारण जी अग्रवाल जी हैं, और जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा, साथ में आपको भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए पसंद का ये गीत सर।
1: ठीक है सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: पवन कर शोर,
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हल्दी दाग निकलेंगे सर्फ एक्सेल मैटिक से फर्स्ट वॉश में।
1: फर्स्ट वॉश में
2: क्या पाउडर वाले ये मानेंगे?
3: इम्पॉसिबल।
0: पाउडर वाले हैरान होंगे क्योंकि सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड की इंस्टा स्टेनफुल टेक्नोलॉजी निकाले जिद्दी दाग फर्स्ट वॉश में, हैरान कर डाले।
4: ऑयली स्कैल्प, ड्राई हेयर,
5: अब और नहीं।
6: हाइलोरॉन प्योर बाय लॉरियल पेरिस, इसमें है सैलिसिलिक एसिड और हाइलोरॉनिक एसिड जो ऑयलीनेस को डिसॉल्व करे स्कैल्प से और बालों को हाइड्रेट करे। 72 आवर फ्रेश बालों के लिए हाइलोरॉन प्योर बाय लॉरियल पेरिस।
7: यू आर वर्थ इट।

0: इतने सारे नुस्खे,
1: कितने भी नुस्खे ट्राई कर लो ये बेली फैट कम ही नहीं होता।
0: नुस्खे नहीं, लिप्टन ग्रीन टी का साइंस ट्राई करो।
2: इसमें है पावरफुल कैटेकन्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और बेली फैट घटाए। लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो।

0: से लीजिए ना होम लोन।
1: महारानी हमसे लीजिए।
2: ऐसा लग रहा है कि हम होम लोन नहीं ले रहे, हमारा स्वयंवर चल रहा है।
3: स्वयंवर नहीं, स्वयं घर महाराज।
4: बेसिक होम लोन, होम लोन्स का स्वयं घर।
5: हेलो डॉक्टर, थैंक्स फॉर मीटिंग मी।
6: रीटा, अब हम लोग एक दूसरे को दोस्त समझ सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी सो फॉर्मल।
5: स्टॉप ट्राइंग टू रीड माय माइंड। आई एम नॉट योर पेशेंट।
6: अमिताभ बोलते चाइनी।
5: इट्स ओके।
7: सो हाउ वाज द डे मिस ब्राउन?
5: टायरिंग।
7: तुम खूब काज करछो। यू वर्क टू हार्ड।
5: আমি বাংলা জানি।
7: রিটা ব্রাউন, আই লাভ ইউ।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा।

0: इतने सारे नुस्खे, कितने भी नुस्खे ट्राई कर लो ये बेली फैट कम ही नहीं होता।
1: नुस्खे नहीं, लिप्टन ग्रीन टी का साइंस ट्राई करो।
2: इसमें है पावरफुल कैटेकल्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और बेली फैट घटाए। लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो।
3: स्वेट कैन कॉज इचिंग इन द इंटीमेट एरिया। वी वॉश एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन।

0: इतने सारे नुस्खे,
1: कितने भी नुस्खे ट्राई कर लो, ये बेली फैट कमी नहीं होता।
0: नुस्खे नहीं, लिप्टन ग्रीन टी का साइंस ट्राई करो।
2: इसमें है पावरफुल कैटेकल्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और बेली फैट घटाए। लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो।
3: स्वेट कैन कॉज इचिंग इन द इंटीमेट एरिया। वी वॉश एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन।

बंद शीशे हैं, दरीचों में खुले मंजर हैं, सब्ज पेड़ों पे, घनी शाखों पे और फूलों पर कैसे चुपचाप बरसता है मुसलसल पानी। कितनी मखलूक है, हंगामे हैं, आवाजें हैं, फिर भी एहसास की एक सतह पे हौले हौले जैसे चुपचाप बरसता है तसव्वुर तेरा।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

レソール。अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर।